लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला।

ऐसे गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले शरण हमंदा। गुर के बचन उचार के धर्म साल दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। शंका मनो मिटाए के गुरसिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा। गुरसिखां नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। कली काल परगास कर गुर चेला चेला गुरसंदा। गुरमुख गाडी राह चलंदा।

0: 탐구를 한다. 탐구를 한다. 왜 티고게? 왜 헛똑하게? 내 짤 표시하게? 던져지네. 이때에서도 더팔 제가 아직은 너의 지금 무려. 라지니, 라지니, 나 ठीक 호게. 나 짤 표시하게, 라지니. 내가 롯 떴다게, 라지니, 나 ठीक 호게.
1: 그럼 어떡해?
0: 나 꺼울. 무슨 부셔내니, 라지니?
1: 나 꺼내, 내 파티. 지난해 며칠 죽게 된 새끼 탐이. 그치니, 내 파티.
0: मैं थोड़ा पति है रजनी जी थोड़ा पिंगला तुसी मन चिंपुर नहीं लैके तुसी मन संजी के दर्शन कराए तुसी मन गोलगोल लैके तुसी मन छबीर वाले बाबे तो पानी पिया मैं थोड़ा पति है मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी मैं थोड़ा पिंगला
1: एक ठीक है पर थोड़ा रोग के भी ठीक होया
0: ते सारी करामात ऐसी चलती है थोड़े जन्म तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई कागो हंस करे ते मैं रिड़ता रिड़ता ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और पानी नु फड़ के पानी च उतर गया जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन
1: तुसी तुसी कैनन भर के पानी कैसे ना के रहे हाथ में
0: ऐसे ना
1: अच्छा तासुक तुसी ऐसा तुम्हें पानी पाओ मैं अपनी अखरी में लिस जलता चमत्कार देखा
0: आओ मेरे

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: बस तो जाए सोना।

0: ऐसे लेकर सिर्फ तुम्हें घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जितो मेरे पति नु नवा जीवन मिलिया सारे लिए कोई था सुलखनी।
2: रजनी ठीक कहती है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा के तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिले। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ छकड़ी अमृत का कुंड है।
3: अमृत से इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

देवते ते शहीद सिंह जदों भी तेरा समा पूरा होगा ओ लियाणगे ते मेरे को नहीं लियाणगे तो गुरु नानक दे दरबार जाएगी सदीका को सतनाम ये गलती ना तेनु इत्थे ले आए ने मैनू कोई सेवा होवे दस मैं शरीर विच तेनु वापस भेजना है ये सच मैं सोची पै गया धर्म राज भी एक महापुरुषा के लांगरी की माता के हाथ जोड़ता होगा पढ़ जो कई बैठे होंगे कट्टड़ एक सुना।

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मां दा खटिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहन नाल सुख मिल जाए ओ भी नहीं है, क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगति विच है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलनहार।